0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध असेंबलीअ मां सिंध जे विरांगे ख़िलाफ़ हिकु वधीक यकराव ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूद सिंध जे विरांगे जो हुकुमरान जमात नून लीग बि नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि जी हिमायत में खुलियल नमूने साम्हूं अची वई। वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल मुल्क 15 नवां सूबा क़ाइमु करण जी तजवीज़ ॾींदे चयो आहे त सिस्टम घुर्बल नतीजा न पियो ॾिए। हर सूबे खे टिनि हिसनि में विरिहाइणु घुर्जे। मुल्क में नवां सूबा ठाहिण लाइ जाइज़ कमेटी जोड़ी कौमी ऐं सियासी बहस शुरू कई वञे। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ इंतिज़ामी ढांचे खे पुराणो ऐं इंतिज़ामी यूनिटनि खे ज़रूरी करार ॾींदे चयो आहे त सिंध असेंबली पंहिंजो ठहराउ मंज़ूर करे सघे थी, पर इहो मामिलो वफ़ाक जो आहे। राणा सनाउला चयो त सिंध असेंबलीअ मां जेको ठहराउ मंज़ूर थियो अहिड़ा पहिरियां बि मंज़ूर थी चुका आहिनि। अहिवाल में तकरीरनि दौरान क़ौमी असेंबलीअ खे गैर ज़रूरी तौर निशानो बणायो वियो। नून लीग 28 तरमीम ते पीपल्स पार्टीअ खे एतमाद में वठण वारियूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारर जी लंडन में सदर आसिफ अली ज़रदारीअ सां मुलाक़ात। 28 आइनी तरमीम जे तयार कयल मसौदे ते सदर आसिफ अली ज़रदारीअ खे एतमाद में वठण जी कोशिश। सदर आसिफ अली ज़रदारी सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह फरियाल तालपुर ऐं सैद नासिर शाह खे लंडन सॾाए वरितो। इजलास में 28 आइनी तरमीम बाबति अहम फ़ैसलनि जो इम्कान। पीपल्स पार्टीअ जो ख़दशा ख़तम थियण ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो साथ ॾियण जो ऐलान। पीपी अॻवान सैद नवीद कमर पार्लियामेंट हाउस में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हू हुकूमत जा मुकमल इतादी त नाहिनि पर उन जो साथ ॾींदा आहिनि। हुकूमत सम्झे थी साथ जी ज़रूरत आहे त शिकायतनि जो अज़ालो बि थियणु घुर्जे। संदन शिकायतूं कश्मीर चूंडनि जजिस मुक़ररी ऐं ॿियनि मामलनि ते आहिनि। पार्टीअ जो फ़ैसिलो आहे त अॻभराई थियण ताईं हुकूमत जो साथ न ॾिनो वेंदो।

तहरीक पसंद तहरीकन ऐं सिंधू देश जे नज़रिए ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में ठहराउ जमा कराए छॾियो। सिंध असेंबली सेक्रेटरिएट में जमा करायल ठहराउ में चयो वियो आहे त ऐवान अलहदगी पसंद तहरीकन ऐं सिंधू देश जे नज़रिए खे रद्द करण समेत पाकिस्तान जी ख़ुदमुख़्तियारी इतिहाद ऐं इलाक़ाई सालमियत खे नुक़सान पहुचाईंदड़ हर एजेंडा जी मज़म्मत करे थो। ऐवान हिन ॻाल्हि जी तौसीक़ करे थो त सिंध पाकिस्तान जो हिकु लाज़मी ऐं फ़ख्रु जोॻो हिसो आहे। मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अली खुर्शीद जो चवणु आहे त अॼु खे असेंबलीअ में ठहराउ पेश करणु न ॾिनो वियो। स्पीकर दॿाउ में नज़र आयो। गुज़िरियल ॾींहं बि ऐवान मां मंज़ूर थियल ठहराउ में मुख़ालिफ़ धुर जूं गुज़ारिशूं शामिल न कयूं वयूं। मुख़ालिफ़ धुर सिंध जे विरहाङे वारी साज़िश लिकाइण लाइ सिंधू देश जे कूड़नि इंतज़ामनि जो सहारो वठी रही आहे। सिंध असेंबली में अपोज़िशन जो जवाबी ठहराउ आवाम खे गुमराह करण जी नाकाम कोशिश आहे। सिंधू देश हुजे या जिनापुर, पीपल्स पार्टी हर सूरत में मुल्क जो दिफ़ा करणु ॼाणे थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह अली खुर्शीद सिंधू देश जे बयाने खे रद्द करे छॾियो। नासिर शाह चयो आहे त सिंध असेंबली जो कालो को ॾींहुं तारीख़ी हो। धरतीअ जे विरहाङे वारियूं साज़िशूं नाकाम एमपीओ में इजलास जो बाइकाट करे साबित कयो त उहा सिंध दुश्मन साज़िश जो हिसो आहे। पीटीआई ऐं जमायत इस्लामी बे ठहराउ जे वक़्तु गैर हाज़िर रही सिंध दुश्मनीअ जो सबूत ॾिनो। हुकूमत पेट्रोल मामूली सस्तो ऐं डीज़ल महांगो करे छॾियो। पेट्रोल 3 रुपया 13 फ़ी लीटर सस्तो ऐं डीज़ल 3 रुपया 74 पैसा फ़ी लीटर महांगो कयो वियो। पेट्रोल जो नओं अघु 345 रुपया 87 पैसा ऐं डीज़ल जो नओं अघु 378 रुपया 5 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा नवां अघु 7 सेप्टेम्बर ताईं लागू हूंदा। महांगाई जे घाणे में पीसजंदड़ आवाम खे पेट्रोलियम बम हमले खां पोइ बिजलीअ जो झटको। नेप्रास जे मुल्क जे वापेदारनि लाइ माहवार ऐं टे माही एडजस्टमेंट जे मद में बिजली महांगी करे छॾी। माहवार

0: एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपया 6 पैसा ऐं 3 माही एडजस्टमेंट में 52 पैसा फी यूनिट मांगी करे जारी कयल नोटिफिकेशन मौजूद माहवार एडजस्टमेंट जे वाद सितंबर जे बिलनि में लागू कई वेंदी। जुलाई जे फ्यूल एडजस्टमेंट जो वापेदारनि ते 23 अरब रुपियनि जो वाधू बार मुंतकिल थींदो। नेपरा अप्रैल खां जून 2026 ते 3 माही एडजस्टमेंट जो फ़ैसिलो वफ़ाक़ी हुकूमत खे उमाणे छॾियो। 3 माही एडजस्टमेंट सेप्टेम्बर खां नवंबर 2026 लाइ लागू हूंदो। वाद के इलेक्ट्रिक जे वापेदारनि ते बि लागू 3 माही एडजस्टमेंट जो वापेदारनि ते 12.67 अरब करोड़ रुपियनि जो वाधू बार हूंदो। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान ऐं फितनल ख़वारिज ख़िलाफ़ कार्रवायूं 24 कलाकनि दौरान वधीक 36 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब कोयटिया मस्तूं कलात ऐं सिबी में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवायूं कयूं वयूं। कोयटिया जे इलाइक़े शोभान में फितनल ख़वारिज जे चइनि ठिकाणनि खे निशानो बणाए 26 ख़ारजी जहननि भेड़ो कयो वियो। मस्तूं में ऑपरेशन दौरान भारतीय स्पॉट 6 दहशतगर्द मारिजी विया। कलात में छापे दौरान भारतीय स्पॉट 2 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। दहशतगर्दनि वटां हथायल बागुदी मवाद ऐं देसी साका बम मौके ते तबाह कया विया। जारी ऑपरेशन दौरान 72 कलाकनि में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु 48 थी वियो। बलोचिस्तान में 2026 दौरान ऑपरेशन में 1188 खां मथे दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो। वज़ीर आज़म पारां कामयाब कार्रवाइनि ते सिक्योरिटी फोर्सिस खे भेटा पेश। KPK जो वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी जो काफ़िलो कंबर ऐं लाड़काणे खां थींदो कंडियारो पहुची वियो। KPK जे वॾे वज़ीर मथां गुलनि जी वर्खा कई वई। सिंधी टोपी ऐं अजरक जा तोहफ़ा ॾिना विया। सुहेल आफरीदी चयो त इस्लामाबाद में 27 सेप्टेम्बर ते रिथियल जलसे जी कामयाबी लाइ सिंध आयो आहियां। हुकुमराननि जो ॾाढ जबर आहे। PTI बानी खे घर भातियुनि सां मिलण बि नथो ॾिनो वञे। बानी जो शिफ़ा इस्पताल में इलाज न कराए सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भनकड़ी कई वई। हक़नि लाइ अवाम खे रोडनि ते अचणो पवंदो। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न CSS इम्तिहान में उमिरि जी हद 30 मां वधाए 35 साल ऐं शिरकत जा मौक़िया 3 मां वधाए 5 करण वारियूं सिफ़ारिशूं रद्द करे छॾियूं। पार्लियामेंट कमेटी आॾो लिखत में मौक़िफ़ पेश। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न चयो आहे त उमिरि जी हद या इम्तिहान में शिरकत जा मौक़िया वधाइणु वफ़ाक़ी हुकूमत जी पॉलिसी करण में शामिलु आहे। FPSC रुगो हुकूमत तरफ़ां मंज़ूर कयल पॉलिसीअ ते अमल करे थी। उमिरि जी हद ऐं शिरकत जा मौक़िया वधाइण सां उमेदवारनि जे अंग सां गॾोगॾु इंतज़ामी बार बि वधी वेंदो। सेनेट जे ज़ेली कमेटीअ उमिरि जी हद ऐं इम्तिहान में शिरकत जा मौक़िया वधाइण जी सिफ़ारिश कई हुई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

चरण सूर चढ़ाकर अते अंगल हक अलेदा इश्क दी मेहर जात निराली अते इश्क

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अमेरिका सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर जा नंढा बम विकरो करण जी मंजूरी ॾेई छॾी। 750 मिलियन डॉलर जूं AGT जे इंजणूं बि ॾिनियूं वेंदियूं। अमेरिकी परॾेही खाते तसदीक कंदे चयो आहे त हथियारनि जी फराहमीअ सां सऊदी अरब जी दिफ़ाई सलाहियत बहितर थींदी। सिटी में अवामी तहरीक जे सर्द जे सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ रैली। सिंध के हिसे जो पाणी ॾियण जो बि मुतालबो कयो वियो। अॻवाननि मूजिबि सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणी समेत समूरा आइनी हक़ ॾिना वञनि।

अकबर जा वार करे मर्डिंग करे छोड़ो जवाबदार गिरफ्तार नारायण भील हमलो करे मामे अर्जन के संदस घरवारी प्रेमी के जख्मी कयो वाके जो मीरपुर रोड ते कणक के गोदामन भरसा वाक्यो पेश आयो है जख्मी जाल मुड़स अस्पताल मुंतकिल किया वह जवाबदार गिरफ्तार पुलिस मूजिब वाक्य पुराने तकरार जो नतीजो है लाड़काने में विन दौरान फोत थियल औरत के वारसन जो लाश रखी धरणो जिम्मेवार डॉक्टर्स खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो यार मोहम्मद कॉलोनी वासण औरत नाजिया जाल अब्दुल शकूर कलोड़ो के वारसन एसपी चौक ते लाश रखी धरणो हो मुजाहिरन मूजिब डॉक्टर्स की गफलत सबब औरत फोत थी है जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की वे

जब से जुवायो रासन मथारं जन साम जो संग सुत को यारो केचियो वलाड़ो वणे चढ़े बिस क्यों झलेदार बेलाइन जी बाहर निकदी कांभुआ मां कतार साशी पसो।

ਸਾਜਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੇ ਸਾਰੀ ਸੰਭ।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दे दिल का सुनो यार सरो पानूर मिया उई वेस चंगेर लिबेस की ता साड़ी दिलड़ी।

0: हाई स्पीड डीजल फी लीटर 233 ऐं पेट्रोल 167 रुपया फी लीटर महांगो विकिरो कयो। हिन वक़्त बि पेट्रोल ऐं डीजल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल आहे, जॾहिं त 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलॻि उगाड़ी वेंदी आहे। अमेरिका सऊदी अरब खे 5 अरब डॉलर जा नंढा बम विकिरो करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। 750 मिलियन डॉलर जूं IGT इंजनूं बि ॾिनियूं वेंदियूं। अमरीकी परॾेही खाते तज़ी कंदे चयो त हथियारनि जी फरहमी सां सऊदी अरब जी दिफ़ाई सलाहियत बहितर थींदी। कराचीअ जी अदालत में गुल प्लाज़ा केस जी ॿुधणी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख जवाबदार करार, 11 सालनि जे हुज़ैफा जो केस अलॻि हूंदो। ॾखण जी अदालत में केस जी ॿुधणी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। पुलिस चालान सां गॾु 85 शाहिदनि जी फ़रस्त बि अदालत में जमा कराए छॾी। बिरया सिटीअ में अवामी तहरीक जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ रैली। सिंध खे हिसे जो पाणी ॾियण जो बि मुतालबो कयो वियो। अॻवाणनि मूजिब सिंध खे विरहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणी समेत समूरा आहिनि या कढना वञनि। नवाबशाह ऐं खीरपुर में पेटियल जे मुतालबनि जी मञता लाइ रैली ऐं धरणो। प्राइमरी उस्तादनि शिराज चौक खां एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब आॾो धरणो ऐं अॻवाणनि चयो त बहिराड़ीअ जे स्कूलनि में फर्नीचर समेत मुख़्तलिफ़ सहूलियतुनि जी खोट आहे। हुकूमत स्कूलनि ऐं उस्तादनि जा जाइज़ मसाला हल कया वञनि। खिपरो में जवाबदार मामे ऐं मामीअ खे कोडर जा वार करे मर्निंग करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार। नारायण भील हमिलो करे मामे अर्जुन ऐं संदसि घरवारीअ प्रेमीअ खे ज़ख़्मी कयो। वाकियो मीरपुर ख़ासि रोड ते कणक जे गुदाम भरिसां पेश आयो। ज़ख़्मी ज़ाल मुड़ुसु इस्पताल मुंतक़िल। जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस मूजिबि वाकियो पुराणे तकरार जो नतीजो आहे। लाड़काणे में वियम दौरान फोत थियल औरत जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवार डॉक्टरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासिन औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकुर कलोड़ जे वारसनि SSP चौक ते लाश रखी धरणो हयो। मुज़ाहिरनि मूजिबि डॉक्टरनि जी गफ़लत सबबि औरत फोत थी आहे। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। ऐं ठुल में 4 साल अॻु क़तल थियल नींगरी अब्दुल गनी दाऊद पुट जा कातिल गिरफ़्तार न थिया। वारस एहतजाजनि शहर छॾे विया। गढ़ी ख़ुदा बख़्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी मज़ार आॾो एहतजाज करण जो ऐलान। मक़तूल नींगर जे वारसनि मूजिबि पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण में नाकाम वई आहे। कातिल गिरफ़्तार कया वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: किताब पढ़ी वल रोवल खौफ तनु हिक रब दे रातो डी हां डरी वल ए सब गालियां ए हां जे हां दे कर कन सुनी वल ए सच लईए तो मकसद मूल न लहस रुगो मूजा विच त मरी वल
1: तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सूबा चओ या इंतजामी यूनिट एम के एम पंहिंजे मौक़ब ते बीठल आहे। एम के एम पंहिंजो मौक़ब तब्दील न आहे कयो। भुटो जे ठहियल आइन ऐं नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एम के एम अॻवान मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि 15-20 माण्हुनि में विरिहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि। हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहर जी हालति बि खिंताई ख़राबु आहे।
1: पेट्रोलियम लीवी जे मद में अवाम खां रिकॉर्ड उगाड़ी। शहबाज हुकूमत में अवाम मुल्की तारीख़ जो महांगो तरीन तेल वठण ते मजबूर। हुकूमत अवाम खां लीवी जे मद में 3,137 अरब खां वधीक उगाड़ी करे चुकी आहे। मौजूदा हुकूमत हाई स्पीड डीज़ल फी लीटर 233 ऐं पेट्रोल 160 रुपया फी लीटर महांगो विकिरो कयो। हिन वक़्त बि पेट्रोल ऐं डीज़ल ते 80-80 रुपया लेवी लागू थियल आहे। 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलॻि उगाड़े वेंदी आहे।
0: पीटीआई जे सिंध में स्ट्रीट मॉम जारी। केपीए जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी जी अॻुवाणीअ में रैली ठारू शाह खां पहुची वई। सोहेल आफरीदी क़ौमी असेंबली जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर ज़फर अली शाह सां बि मुलाक़ात कई। सोहेल आफरीदीअ चयो त जमहूरियत लाइ जिदोजहद जारी रहंदी।
1: कराची जी अदालत में गुल प्लाज़ा केस जी ॿुधणी पुलिस आलान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार।

0: जे वारसन जो धरणो पुलिस नौजवान जे वारसन के कौमी शाहरा ते धरणो हणण खां रोके छॾियो। नौजवान इरशाद बलोच जे वारसन मेमण गोट रोड ते धरणो हयो। वारसन मूजिब नौजवान खे बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। इंसाफ़ कयो वञे।
1: दरिया सिटीअ में अवामी तहरीक जे सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ रैली। सिंध खे हिसे जो पाणी ॾियण जो बि मुतालबो कयो वियो। अॻवाणनि मूजिब सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणीअ समेत समूरा आइनी हक़ ॾिना वञनि।
0: नवाबशाह ऐं खैरपुर में पेटे हलिफ़ जे मुतालबनि जी मंझता लाइ रैली ऐं धरणो। प्राइमरी उस्तादनि शिराज चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब आॾो धरणो हयो। अॻवाननि चयो आहे त बहिराड़ जे स्कूलनि में फर्नीचर समेत मुख़्तलिफ़ सहूलियतुनि जी सख़्त खोट आहे। हुकूमत स्कूलनि ऐं उस्तादनि जा जाइज़ मसला हल कया वञनि।

खे कोडर जा वार करे मरणी करे छॾियो। जवाबदार गिरफ़्तार नारायण भील हमलो करे मामे अर्जुन ऐं संदसि घरवारी प्रेमीअ खे ज़ख़्मी कयो। वाकियो मीरपुर ख़ास रोड ते कणक जे गोदाम भरिसां पेश आयो। ज़ख़्मी ज़ाल मुड़ुसु इस्पताल मुंतक़िल। जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस मूजिबि वाकियो पुराणे तकरार जो नतीजो आहे।

0: लाड़काणे में विम दौरान फौत थियल औरत जे वारसन जो लाश रखी धरणो, ज़िम्मेवार डॉक्टर खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। यार मोहम्मद कॉलोनी वासण औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर करोड़ जे वारसन एस पी चौक ते लाश रखी धरणो आयो। मुज़ाहिरीन मूजिब डॉक्टर जी गफ़लत सबब औरत फौत थी आहे, ज़िम्मेवार खिलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
1: ठुल में चार साल अग कतल थियल नीगर अब्दुल गनी दाऊद पुटो जा कातिल गिरफ्तार न थिया। वारस एतजाजन शहर छे व्या। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार आडो एतजाज करण जो ऐलान। मकतुल नीगर के वारसन मूजिब पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करण में मुकमल तौर से नाकाम वही है। कातिल गिरफ्तार कया वजन।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडो सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

एमकेएम पंहिंजे मौक़ ते बीठल आहे। एमकेएम जो पंहिंजो मौक़ तब्दील न आहे कयो वियो। भुट्टे जे आईन ठहियल में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एमकेएम अॻवान मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि बदिरां 20 माण्हुनि में विरिहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि। हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहर जी हालति विनताई ख़राबु आहे।

कॾहिं सिंध जे विरांगे ऐं कॾहिं वरी इंतज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि कनि था, नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसला हल न थींदा। विटो मयार ख़तम थियणु घुर्जे। ही माण्हू न कराची शहर जा सचा आहिनि, न ही भाई सां सचा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा वहाब चयो आहे त कराची खे विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सभ खां पहिरियां पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुया। मुस्तफ़ा कमाल जो दौर ख़तम थी वियो, हाणे मुर्तज़ा वहाब जो दौर आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपयनि जी बजट जो हिसाब ॾे।

0: लागू थियल आहे, जॾहिं त 5-5 रुपया क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलॻि उगाड़ी वेंदी आहे।
1: जमायत इस्लामी तेल जे अघनि में वाद खिलाफ़ हुकूमत खे फीथा रोक हड़ताल जो चिताव ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हाफिज़ नईम चयो त हुकूमत मसलो हल न कयो त फीथा रोक हड़ताल तरफ़ ईंदासीं। पेट्रोलियम लीवी जो तेल जे अघनि सां को बि वास्तो न आहे। हुकुमराननि ऐं ब्यूरोक्रेसीअ जे ऐशियुनि जो बार ग़रीब आवाम ते विधो पियो वञे। आलमी मंडीअ में तेल महांगो थी रहियो आहे त पेट्रोलियम लीवी ख़तमु करे छॾियो।
0: पीटीआई जी सिंध में स्ट्रीट मॉम जारी। केपीए जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी जी अॻुवाणी में रैली ठारू शाह पहुची वई। सोहेल आफरीदी क़ौमी असेंबलीअ जे अॻूणे डिप्टी स्पीकर ज़फर अली शाह सां बि मुलाक़ात कई। सोहेल आफरीदीअ चयो त जमहूरियत लाइ जिदोजहद जारी रहंदी।
1: कराची जी अदालत में गुल प्लाज़ा केस जी ॿुधणी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छॾियो। तनवीर पास्ता मुख जवाबदार करार। 11 सालनि जी उज़ैफा जो केस अलॻि हलंदो। ॾखण जी अदालत में केस जी ॿुधणी थी। जवाबदार तनवीर पास्ता ऐं ॿिया अदालत में पेश थिया। पुलिस चालान सां गॾु 85 शाहिदनि जी लिस्ट बि अदालत में जमा कराई।
0: कंदकोट वेझो मुड़ुस कारा इल्ज़ाम हेठि ज़ाल खे क़तल करे छॾियो। ए सेक्शन थाणे जे हद ॻोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्ज़ोई ज़ाल ज़ोरा खे कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। पुलिस मूजिबि जवाबदार फरार थी वियो आहे। खेसि जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। वधीक जांच बि जारी आहे।

मलिर में सिटी पुलिस के मुबैन तशद में मार नौजवान के वारसन जो धरणो। पुलिस नौजवान के वारसन के कौमी शाहरा से धरणो का रोके छो। नौजवान इरशाद बलोच के वारसन मेमण गोट रोड से धरणो हयो। वारसन मूजिब नौजवान के बेगुनाह कतल कर इंसाफ कर

0: टंडो जान मोहम्मद ऐं बिरया सिटीअ में मुख़्तलिफ़ रैलियूं। सिंध खे हिसे जो पाणी ॾियण जो बि मुतालबो कयो वियो। अॻवाणनि मूजिबि सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश कंहिं बि सूरत में क़बूल न कई वेंदी। सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं बंदि करे सूबे खे पाणीअ समेत समूरा आइनी हक़ ॾिना वञनि।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पेटे अलिफ़ जो मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज। स्कूलनि खे सहूलियतूं ॾियण जो बि मुतालबो। हैदराबाद मटियारी, नवाबशाह सागर ऐं खैरपुर में प्राइमरी उस्तादनि एहतजाज कयो। अॻवाणनि चयो आहे त तालीम खातो प्राइमरी उस्तादनि जा जायज़ मसला बि हल करण लाइ तयार न आहे। उस्तादनि जा मसला हल कया वञनि।

कराची में जूनियर साइंस टीचर टेस्ट पास उम्मीदवारों जो एहतजाज 35 दिन का एहतजाज जारी 50 का वधिक मार्कों खणंदड़ उम्मीदवारों प्रेस क्लब बाहरा कैंप ते एहतजाज करे सख्त मुजाहरो कयो। मुजाहरीन जो चवण आए तो 50 मार्कों खणंदड़ उम्मीदवारों के पास करार दई नौकरियों देने जो मुतालबो कयो।

0: हैदराबाद जे इलाइक़े कासमाबाद जे शीदी ॻोठ में गटरनि अंदरि विछायल गैस पाइपलाइन में धमाका। अनवर उल्लास भरिसां गटरनि अंदरि विछायल गैस लाइन जे धमाकनि सबबि इलाइक़े में ख़ौफ़ पखिड़िजी वियो। सीसीटीवी फुटेजिस में धमाकनि सबबि ख़ौफ़ विचां माण्हुनि खे भॼंदे ॾिसी सघिजे थो। शहरियुनि पारां गैस लाइन जे मरम्मत करण जो मुतालबो।
1: लाड़काणे में वियम दौरान फोत थियल औरत जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। ज़िमेवार डॉक्टरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। यार महमद कॉलोनी वासण औरत नाज़िया ज़ाल अब्दुल शकूर कलोड़ जे वारसनि SSP चौक ते लाश रखी धरणो हयो। मुज़ाहिरिन मूजिबि डॉक्टरनि जी गफ़लत सबबि औरत फोत थी आहे। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे।
0: ऐं ठुल में 4 साल

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कोरोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: जिले बना सकते हैं लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये नहीं बनने चाहिए। इसकी वजूहत बहुत सारी सियासी जो आप सब लोगों ने एक्सप्लेन कर दी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उन सब चीजों के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जब बात आती है कि पावर निचली सतह पर चली जाए तो उसके ऊपर हर एक को एतराज हो जाता है। अभी ये एतराज दूर करना है। आपको किसी ने नहीं कहा कि हम किसी भी तरीके से कोई गैर आईनी चीज होने देंगे। हम सब जो यहां लोग बैठे हुए हैं, हम सब इस ओथ पे हैं कि हमने किसी भी तरीके से कोई गैर आईनी चीज नहीं होने देनी है, लेकिन आईन में रह के तो हमारे पास बहुत पावर है। आज सिर्फ दो तीन चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगा जो आप सब लोगों ने कही कि 79 ईयर्स में हम सिर्फ 2.5 करोड़ बच्चा है जो आज भी स्कूल नहीं भेज सके। आज भी 10 में से 4 बच्चे हैं जिसको हम गजा प्रोवाइड नहीं कर सके। ये सब बातें आप लोगों ने आज सुबह से करी हैं। आज भी सिर्फ 55% पाकिस्तानी है जिसको पानी साफ नहीं मिल रहा। और चेयरमैन के साथ माजरत से, आज सिर्फ अदालतों में 20 लाख केसेस हैं जो लोग धक्के खा रहे हैं और इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए। ये किसी एक हुकूमत का रिजल्ट नहीं है, ये हमारा 79 इयर्स का रिजल्ट है। ये सिर्फ फैक्ट्स वो नहीं है, ये वो फैक्ट्स हैं जो हम ऑफिशियली रिकग्नाइज करते हैं और इसके ऊपर हम दिन रात बैठ के कोशिश करते हैं कि इसको ओवरकम कर लें। आज भी वो वालिद और वालदा अपने बच्चों को स्कूल के जाने के लिए, हेल्थ के लिए और अपनी जस्टिस के लिए उसी तरह मुंतजर हैं।

0: अपनी उस शहर पे होता है जहां हम रहते हैं। मैं आपको सिर्फ दो मिसालें देना चाहूंगा। मैंने एक साल में पूरी कोशिश की कि मैं पंजाब के हर जिले का विजिट कर लूं, और उसमें से चंद जिले ऐसे थे जहां मैंने एक एक दो दो घंटे का विजिट किया। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं 70% पंजाब से ज्यादा विजिट नहीं कर सका, और मैं फिर मानता हूं कि उनमें वो इलाके भी हैं जहां मैं सिर्फ घंटा या डेढ़ घंटा दो घंटे से ज्यादा नहीं जा सकता। ये इतना बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान इसी तरह है। उन दिनों में मरदमशुमारी हो रही थी, तो एक मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि बड़ा सीरियस इशू बन गया है और पंजाब की सीटें कम होने जा रही हैं। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा किसी एक सूबे ने मरदमशुमारी में जो है वो नंबर एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो उसकी चौथी पांचवी चार पांच सीटें जो एक्स्ट्रा हैं। तो जिस मुल्क में आबादी बढ़ाने का इंसेंटिव हो और आपको कहा जाए कि जितनी आप आबादी बढ़ाएंगे उतने आपको फंड मिलेंगे, और आज तक वो इंसेंटिव मौजूद है, तो क्या हम उस बम को क्लिक करने का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बम फटेगा? और हम आज तक इसको फिक्स नहीं कर पा रहे कि आबादी बढ़ाओ और वसाइल लो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुठी हुकूमत निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा। इंतिज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुर्जनि। पंजाब, सिंध, केपी ऐं बलोचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइन फ्रॉड जी मौजूदगीअ ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमाना हूंदी। सूबा चओ या इंतिज़ामी यूनिट एम क्यू एम पंहिंजे मौक़ ते बीठल आहे। एम क्यू एम पंहिंजो मौक़ तब्दील न आहे कयो। भुट्टो जे ठाहियल आइन में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम अॻवान मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो पैसो चइनि सूबनि बदिरां वीहनि माण्हुनि में विरिहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि। हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहर जी हालति बि इंतिहाई ख़राबु आहे। ही कॾहिं सिंध जे विरहाङे जी कॾहिं वरी इंतिज़ामी यूनिट्स जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसइला हल न थींदा। ॿिटो मयार ख़तमु थियणु घुर्जे। ही माण्हू न कराची शहर जा सचा आहिनि न ई भाईअ सां सचा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा वाब चयो त कराचीअ खे विरहाइण जी ॻाल्हि कंदड़ सभ खां पहिरीं पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुया। मुस्तफ़ा कमाल जो दौरु ख़तमु थी वियो। हाणे मुर्तज़ा वाब जो दौरु आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपियनि जी बजेट जो हिसाबु ॾे।

आफिसरनि ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई मुकमल। अठनि आफिसरनि जा नाला ICL में शामिल करण जो फ़ैसिलो। इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर इमरान सिकंदर समेत अठनि आफिसरनि जा नाला ICL में शामिल करण लाइ घरू खाते खे ख़त लिखी छॾियो।

आज़ाद कश्मीर में फसादी जत्थे की फायरिंग में एफ सी अहलकार शहीद, रेंजर्स अहलकार जख्मी। आज़ाद कश्मीर पुलिस मूजिब शरपसंद पुलिस पोस्ट से फायरिंग कई, जैसे नतीजे में एफ सी अहलकार रहीम गुल शहीद थो, रेंजर्स अहलकार जख्मी थो। जवाबी कार्रवाई में एक शरपसंद मारे बारूदी मवाद हथियार हथ कया हुआ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इसको ना तो कोई एक वर्दे वाहिद, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकते हैं। ये वो चीज है जो अगर पब्लिक के दिल की आवाज है तो ये हर सूरत होगी और इंशाल्लाह होके रहेगी।
2: जज्बाती न थियो, इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा। को फर्द, सियासी जमात या नुमाइंदो रोके न तो सके। इंतजामी विरासत जो मकसद हुकूमत की तादाद वधाण न पर निज़ाम के बेहतर करना है। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो, रुगो अख्तियार हेठी सतह ते मुंतकिल थींदा। नौकरी ते रहा या न रहा, मामले तां पोइते न हटंदुस। लाहौर में तकरीब के खिताब कंदे वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी चयो तो मामले ते सियासतदानन खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। नवन इंतजामी यूनिट से पंजाब या सिंध की सुणप तब्दील न थी। नवा इंतजामी यूनिट भी नस्ल या बिरादरी की बुनियाद न पर बेहतर हुक्मरानी लाए ठहन घुर्जन। मौजूदा निज़ाम नतीजा न दे रो है, रीसेट करो पवो। असो मकसद हुकूमत या सियासी जमात के तब्दील कर न पर निज़ाम में मौजूद खामियन के खत्म करना है। नओ सूबो ठहणो है तो इस्लामाबाद के सूबे जो दर्जो मिलन घुर्जे। नवन इंतजामी यूनिट्स से घबराने की जरूरत ना है। मामले से सियासतदारन का अवामी राय अहम है। पाकिस्तान की मफाद में थींद फैसला सभी के तस्लीम करना पवंदा। नवा सूबा ठाण से मसला हल ना, मुस्तकिल हल गोलो पवो। अगूणे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवन सूबन बाबत नेशनल पॉलिसी डायलॉग के खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी तो सूबाई हुकूमतों बादशाहन का बे बुरी अंदाज में हली रही है। बादशाह भी मुशावरत कंदा हुआ, असाजा सूबा हिदायतों से हली रहा है। नवन नून लीग के ख्वाजा साद रफीक तो नंढा सूबा ठाण से आब हयात पखिड़ी वो आइन की तोहिन करनी है तो भले जेतरा वण्य सूबा ठाए छो को भी फर्क न पवो। मुमलकती वजीर ओन चौधरी तो तरक्की याफ्ता मुल्कन में नंढा इंतजामी यूनिट कायम आन। नवन इंतजामी यूनिट्स से पार्लियामेंट अंदर बाहर बहस थियन घुर्जे। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान तो सुठी हुकूमत निज़ाम लाए वा सुधारा आना पवंदा। अवामी नुमाइंदन के अख्तियार दियण बिना मामला अगते न वधंदा। इंतजामी अख्तियार चूंडियल नुमाइंदन वट होजन घुर्जन। पंजाब सिंध KPK बलोचिस्तान जहाँ रूट्स ऑफ बिजनेस आइन से टकराव में आन। आइनी फराड की मौजूदगी तीन सुधारण की गाल बेमाना होंगी। सूबा चो या इंतजामी यूनिट MQM पंहिंजी मौकिफ़ ते बीठल है। MQM पंहिंजो मौकिफ़ तब्दील नाहे कयो। भुट्टो जी ठायल आइन में नवन सूबन जी गुंजाइश मौजूद है। कराची में मीडिया सां गालाइंदे MQM अगवान वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल चयो तो पाकिस्तान जो पैसो चयन सूबन बदिरां 20 माण्हुनि में विरिहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि, हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहरनि जी हालति बि इंतिहाई ख़राबु आहे।

ये कदें सिंध की विरांगे कदें वरी इंतजामी यूनिटन की गाल कन था नवन सूबन से मुल्क जहा मसला हल न थींदा बिटो मयार खत्म थियण घुर्जे ये मानू न कराची शहर जा सचा आहिन न ही भाई से सचा आहिन।

केस जी बुधणी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छो तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार 11 साल की हुज़ैफ़ा जो केस अलग हल दखण की अदालत में केस की बुधणी थी जवाबदार तनवीर पास्ता बया अदालत में पेश थे पुलिस चालान से गड 85 शाहिदन की फहरिस्त भी अदालत में जमा कराई कंदकोट भरसा मुड़स कार इल्ज़ाम हेठ ज़ाल के कतल कर छो ए सेक्शन थाने की हद गोठ मोहम्मद पनाह में मुनीर सब्जोई ज़ाल ज़हरा के कार इल्ज़ाम हेठ कतल कर पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वो है केस जल्द गिरफ्तार किया वो

सिंध जी इम्कानी विरहांगे खिलाफ अवामी तहरीक जो ठठे टंडो जान मोहम्मद ए बिरया सिटी में रैलियों सिंध के हिस्से जो पानी दियण जो भी मुतालबो अगवाणन मूजिब सिंध के विरहण वाली साजिश कें भी सूरत में कबूल न कई वेंदी सिंध खिलाफ साजिशूं बंद करे सूबे के पानी समेत समूरा आइनी हक डिना वन सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में पेटे अलिफ जो मुतालबन की मंता लाए एहतजाज स्कूल के सहूलतू दियण जो भी मुतालबो हैदराबाद मटियारी नवाबशाह सांगड़ ए खैरपुर में प्राइमरी उस्तादन एहतजाज कयो अगवाणन तालीम खातो प्राइमरी उस्तादन जा जायज़ मसला भी हल करण लाए तैयार ना है उस्तादन जा मसला हल कया वञनि।

कराची में जूनियर साइंस टीचर्स टेस्ट पास उम्मीदवार जो एहतजाज 25 ॾींहं खां जारी 50 खां वधीक मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवार प्रेस क्लब ॿाहिरां कैंप ते एहतजाज जारी रखियो। मुज़ाहिरीन जो 50 मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवार खे पास करार ॾेई नौकरियूं ॾियण जो मुतालबो। हैदराबाद जे इलाइक़े कासिमाबाद जे शीदी ॻोठ में गटरनि अंदरि विछायल गैस पाइप लाइन में धमाका। अनवर विलास वेझो गटरनि अंदरि विछायल गैस लाइन जे धमाकनि सबबि इलाइक़े में ख़ौफ़ पखिड़िजी वियो। सीसीटीवी फुटेजिस में धमाकनि सबबि ख़ौफ़ विचां माण्हुनि खे भॼंदे ॾिसी सघिजे थो। शहरनि पारां गैस लाइन जी मरमत करण

ठुल में चार साल अग कतल थियल नींगर अब्दुल गनी दाऊद फोटो जा कातिल गिरफ्तार न थिया वारिस एहतजाजन शहर छड़े वया गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर जी मजार आलो एहतजाज करण जो ऐलान मकतूल नींगर जे वारसन मौजे पुलिस जवाबदारन के गिरफ्तार करण में नाकाम वई है कातिल गिरफ्तार किया वञनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GAFM 88
1: नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आईनी मुदाखलत करार ॾेई छॾियो। समूरी सिंध में एहतजाज जो फ़ैसिलो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कोड़े जी सदारत हेठि पार्टी जो अहम इजलास। सिंधी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूद वफ़ाक़ी वज़ीरनि पारां नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि बाबति ॾिनल बयाननि जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई वई। सिंधी इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ डिवीजन्स ज़िलनि ऐं तालुकनि में एहतजाज जो फ़ैसिलो। इजलास में चयो वियो त वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि बाबति बयाननि जो नोटिस वठे ऐं अहिड़ा बयान ॾियण खां रोके। सिंधी असेंबली मां ठहराउ मंज़ूर करण ते PPMPS सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलाल भुट्टो खे भेटा पेश। सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ क़रारदाद ते वोटिंग में हिसो न वठंदड़ जमातनि ते सख़्त तंक़ीद। नवां सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल घुरणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरे अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ। असांजा सूबा हिदायतनि ते हली रहिया आहिनि ऐं नून लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आबिहार पखिड़िजी वेंदो। आइन जी तोहीन निकरणी आहे त पोइ भली जेतिरा बणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ु न पवंदो। ममलकती वज़ीर अरुण चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइमु आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुरिजे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो आहे त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा। इंतिज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुरिजे। पंजाब सिंध केपी ऐं बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइनी फ्रॉड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमाइनी हूंदी। इंतज़ामी सुधारा ऐं सूबनि जे नए सिर जोड़ जा बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि। सूबा रुगो इंतिज़ामी यूनिट न आहिनि, हिननि जी पंहिंजी तारीख़, सुञाणप, सकाफ़त, ॿोली ऐं आइनी हैसियत आहे। सिंध जो अवाम पंहिंजी सरज़मीन, तारीख़ ऐं सुञाणप जे बारे में बार बार वाज़े ऐं गॾियल राय ॾेई चुको आहे।

सूबा चओ या इंतज़ामी यूनिट एम क्यू एम पंहिंजे मौक़िफ़ ते बीठल आहे। एम क्यू एम पंहिंजो मौक़िफ़ तब्दील नाहे कयो। भुट्टो जे ठहियल आइन में नवनि सूबनि जी गुंजाइश मौजूदु आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एम क्यू एम अॻवान वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त पाकिस्तान जो पैसो 10 सूबनि बदिरां 20 माण्हुनि में विरिहाइजे थो। सिंध में 18 सालनि खां पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। सूबे में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि, हिकु गटर बि संभाले नथा सघनि। शहरनि जी हालति बि इंतिहाई ख़राबु आहे। ही कॾहिं सिंध जे विरागे ऐं कॾहिं वरी इंतिज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि कनि था। नवनि सूबनि सां मुल्क जा मसला हल न थींदा। मिटो मयार ख़तमु थियणु घुरिजे। ही माण्हू न कराची शहर सां सचा आहिनि, न ई भाई सां सचा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मेयर मुर्तज़ा बाब चयो त कराची खे विरिहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सभ खां पहिरीं पाण ज़िला ऐं टाउन ठाहिया हुआ। मुस्तफ़ा कमाल जो दौरु ख़तमु थी वियो, हाणे मुर्तज़ा बाब जो दौरु आहे। मुस्तफ़ा कमाल 300 अरब रुपियनि जी बजट जो हिसाबु ॾिनो।

कराची जी अदालत में गुल प्लाजा के अची बुधनी पुलिस चालान अदालत में जमा कराए छो तनवीर पास्ता मुख्य जवाबदार करार 11 साल के हुसैफा जो केस अलग हलो खड़ की अदालत में केस की बुधनी थी जवाबदार तनवीर पास्ता बिया अदालत में पेश थे पुलिस चालान से गड 85 शाहिद की फहरिस्त भी अदालत में जमा कराए छी सिंध के इम्कानी विराग के खिलाफ अवामी तहरीक जो टटे टंडो जान मोहम्मद बिरिया सिटी में रैलियों सिंध के हिस्से जो पानी दियण जो भी मुतालबो किया अगवान मूजिब सिंध के विरायण वाली साजिश कें भी सूरत में कबूल न कई वी सिंध खिलाफ साजिशों बंद कर सूबे के पानी समेत समूरा इन हफ्ते न वन

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पेटीअलिफ जो मुतालबो पंजीमहताला एहतजाज, स्कूलनि खे सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो। हैदराबाद, पटियारी, नवाबशाह, सांगण ऐं खैरपुर में प्राइमरी सदन एहतजाज कयो। अॻवाननि चयो त तालीम खातो प्राइमरी सदन जा जाइज़ मसला बि हल करण लाइ तयारु न आहे। सदन जा मसला हल कया वञनि।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: ढाडू सुठो
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

फरमाशा बदीन का मोती सुनारो तलाल का लिमो बाजी मास्टर नसलपुर शहर का कृष्ण सेजानी साहब सिखात का फनकार फारूक सोलंगी बुझाणी का हाशिम राशिद अयूब सोलंगी लिमो बाजी मास्टर जल्द चाहे दो चिंची।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करणु न, पर निज़ाम में मौजूदु खामियुनि खे ख़तमु करणु आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत न आहे। मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। मुल्क में को नओं सूबो ठहे थो त इस्लामाबाद खे बि सूबो थियणु घुरिजे। आउं उन जो सभ खां वॾो हामी आहियां। पाकिस्तान जे मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा।
2: सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल घुरणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरे अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ, असांजा सूबा हिदायतनि ते हली रहिया आहिनि। नव नून लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां बि हयात पखिड़िजी वेंदो? आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भली जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ु न पवंदो। ममलकती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइमु आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुरिजे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो आहे त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा। अवामी नुमाइंदनि खे इख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा, इंतज़ामी इख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुरिजे। पंजाब सिंध केपी ऐं बलूचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आइनी फ्रॉड जी मौजूदगी ताईं सुधारनि जी ॻाल्हि बेमानी हूंदी।
1: सिंध असेंबलीअ मां सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर थियण बावजूदि वफ़ाक़ी वज़ीरनि जा तकरारी बयान। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म खां नोटिस वठण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े जी सदारत हेठि इजलास दौरान वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे बयाननि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। सिंध असेंबलीअ मां तारीख़ी ठहराउ मंज़ूर करण ते एम पी एस सदर आसिफ़ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मुराद अली शाह खे ख़िराज तहसीन पेश। इजलास में ख़बरदार कयो वियो त आइन में तरमीम लाइ वफ़ाक़ वटि पार्लियामेंट में ॿ भाङे टे अक्सरियत मौजूदु न आहे, तंहिं करे
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GAFM 90.8।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

फरमाइशा बदीन का मोती सुनारो तलाल का लिमोबाजी मास्टर नसलपुर शहर का किशन सेजानी साहब सिखात का फनकार फारूक सोलंगी बुझाणी का हाशिम राशिद अयूब सोलंगी लिमोबाजी मास्टर दरवेश चाहे दो चिंच।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आजकल बहुत सारी जज्बाती तकरीर हो रही है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में, ना तो ये किसी एक शख्स की मर्जी होनी चाहिए, ना किसी एक हुकूमत की और ना किसी एक सियासी जमात की। तमाम सियासी जमातों को इस मसले पर बैठना हो, ये किसी एक शख्स का मसला नहीं हो। ये कि ये कितने इंतजामी यूनिट होने चाहिए, 20, 30, 19, 15, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन के रहेंगे। इसको ना तो कोई एक फर्द वाहिद, ना कोई एक सियासी जमात और ना ही नुमाइंदे रोक सकती है।
2: जज्बाती न थिए, इंतजामी यूनिट जरूर ठहंदा, को फर्द सियासी जमात या नुमाइंदो रोके नथो सके। मौजूदा स्ट्रक्चर बरकरार रहंदो, रुगो अख्तियार हेठी सतह ताईं मुंतकिल थींदा। ॾखण या उत्तर पंजाब ठहण सां पंजाब जी हैसियत ख़तम न थींदी। ईअं सिंध में इंतज़ामी यूनिट थियण सां सिंधियुनि खां को पंहिंजी सुञाणप कसे न सघंदो। ऐं हिन नौकरी ते रहां या न रहां, मामले तां पोइ ते न हटंदुसि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो लाहौर में तकरीर ख़िताब। मोहसिन नक़वी चयो त मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहमियत रखे थी। मौजूदा निज़ाम नतीजा न ॾेई रहियो आहे, रीसेट करणो पवंदो। असांजो मक़सदु हुकूमत या सियासी जमात खे तब्दील करण न, पर निज़ाम में मौजूद खामियुनि खे ख़तमु करणु आहे। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते घबराइण जी ज़रूरत नाहे, मामले ते सियासतदाननि खां वधीक अवामी राय अहम आहे। मुल्क में को नओं सूबो ठहे थो त इस्लामाबाद खे बि सूबो थियणु घुरिजे। ऐं हिन जो सभ खां वॾो हामी आहियां। पाकिस्तान जे मफ़ाद में थींदड़ फ़ैसिला सभिनी खे तस्लीम करणा पवंदा।
3: नवा सूबा ठाहिण सां मसला हल न थींदा, मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासीअ जो लाहौर में नवनि सूबनि बाबति नेशनल पॉलिसी डायलॉग खे ख़िताब। शाहिद खाकान अब्बासी चयो त सूबाई हुकूमतूं बादशाहनि खां बि बुरी अंदाज़ में हली रहियूं आहिनि। बादशाह बि मुशावरत कंदा हुआ, असांजा सूबा हिदायतुनि ते हली रहिया आहिनि। नऊन लीग जे ख़्वाजा साद रफ़ीक़ चयो त छा नंढा सूबा ठाहिण सां आबे हयात पखिड़िजी वेंदो, आइन जी तोहीन करणी आहे त पोइ भली जेतिरा वणियो सूबा ठाहे छॾियो, को बि फ़र्क़ु न पवंदो। ममलकती वज़ीर ओन चौधरी चयो त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में नंढा इंतज़ामी यूनिट क़ाइमु आहिनि। नवनि इंतज़ामी यूनिट्स ते पार्लियामेंट अंदरि ऐं ॿाहिरि बहस थियणु घुरिजे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद ख़ान चयो त सुठी हुकूमती निज़ाम लाइ वॾा सुधारा आणणा पवंदा, अवामी नुमाइंदनि खे अख़्तियार ॾियण बिना मामला अॻिते न वधंदा। इंतज़ामी अख़्तियार चूंडियल नुमाइंदनि वटि हुजणु घुरिजनि। पंजाब, सिंध, KP ऐं बलोचिस्तान जा रूल्स ऑफ बिज़नेस आइन सां टकराव में आहिनि। आईनी फ्रॉड जी मौजूदगी ताईं सुधारण जी ॻाल्हि बेमाना हूंदी।
0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।